0: रेडियो आदि खुला 105.4
1: समी चौं चौदह क्या में बोधे लोटी पर दीरो बैंगे ने विवरण पी भी है मुही खातर खाई अमरो
2: खाई खाई बाहु कोई लोटर बढ़ दिलवा
3: आंगी समी चौं लोटी पर दीवों छांता ही गुरी
2: बढ़ दी आ बढ़ दीवा लोटर खाली पर दीम बा सहीली मैसेज व्हाट्सएप फेसबुक वाइबर खाने बनी खाई विषय खाई मई विश्वास आनंद होने खाले पनी आप ही विवरण खाई मई आपिन खबर बनी वित्तीय संस्था के पासवर्ड पिन खाई मई आरी सुमी बैंक आप ही बनी आरी
3: सिद्धार्थ ब्यांगर क्यारे जन हेजरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदै भरिलाई
4: स्कूल तथा अफिस का ड्रेस किनेर बनाउनु पर्ने अनि अन्य कपडाहरु पनि चाहिएको थियो भागादौड गर्नु पनि समय छैन सबै सामान एकै ठाउँमा पाउने भए सजिलो हुने
5: त्यति कुरा माने यति धेरै तनाव भर्खरै जानुस् त वालिङ आठ नयाँ बजारको पोसाक बगैंचामा सबै सामान त्यही पाइन्छ
4: हजुर सम्पूर्ण विद्यालय र क्याम्पसका ड्रेसहरू सरकारी कर्मचारीका ड्रेसहरू संघ संस्था सहकारीका ड्रेसहरू रेडीमेड बेहुलाका दौरा सुरुवाल रेडीमेड कोट प्यान्ट झोला जुत्ताहरू पाउनुका साथै सम्पूर्ण तयारी तथा काँचो कपडाहरू तथा अर्डर बमोजिमका कपडाहरू तयार गर्नुका साथै सम्पूर्ण सेवाका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्
5: पोसाक बगैंचा वालिङ आठ नयाँ बजार प्रोप्राइटर प्रकाश अर्याल मोबाइल 98560303829
0: रेडियो आदि खुला 105.4

0: एस आदि खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक गरगहना ग्यारेन्टी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईंक सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सेंचा।
1: रेडियो आदि खोला 105.4

0: ब्रो
1: कहिले
0: मिल्दैछ कि ब्रो
2: राम्रोसँग ल मिलाइदिए
0: राम्रोसँग ल गाइदिए
2: आफै
0: मुच्छे

हजुर, कार्यक्रम को क्रम में राखी छोटो व्यापारिक विश्राम संगे पुनः स्वागत करते कार्यक्रम काम बिस्पिका भाग में। आज हमी कार्यक्रम काम बिस्पिका भाग को सुंदर बसाई शुक्रवार व्यवसाय में छौ। शुक्रवार व्यवसाय में रहकर सुमधुर खाल का नया पुराना लोकगीत भाका कार्यक्रम में स्थान दी अगाड़ी बढ़ी रहेका छौ। विशेषकरी हामी दोपहर को आवाज कार्यक्रम में स्थान दिने दिन में छौ। यद्यपि टेलीफोन में कहीं समस्या भएका कारण हामी दोपहरसँग कुराकानी गर्न सकिरहेका छैनौ। यसै क्रम में हामी अर्को भाका जोड्छौं। सोही भाकासँगै हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौ। यहाँहरु भने हामीसँगै रहनुहोला।

0: बात ना, आइए हम लोग अनिमा दिल्ली बजे का छा
1: इस समय को साथ मा जितू सुनचादी पसल
2: भूसाल पेट्रोल पंप संगे चोड़िए को डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तरफ जाने बाटो मा कुना को साइड मा
1: विश्वासिलो भर पर्दो र आकर्षक डिजाइन का घर गहना खरीद बिक्री करने ठाउँ
0: सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो आदि खोला 105.4 आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् है।